आपको हल करने के लिए तहखली की तस्वर पर सोच विचार कर रहे हैं, जिनका मकसद रहनुमाओं की 81वीं कौमती दर्जन असम्बली के मौके पर मुद्दों को मुलाकात से कल मामला को सुलझाना है। फिदा ने कहा कासा पाबंदियां खासतौर पर हमारे सदारती दफ्तर बर दिफाई सनत के लिए एक रुकावट है, हम को हटाए जाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि S-400 के मसले को हल करने के लिए भी कुछ तहलीकी तस्वरात मौजूद हैं जिनके बायस ये पाबंदियां लगी। हम बाहमी नसहुसन नीयत के साथ हल अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है हम इस बारे में मुस्बत इकदाम उठाएंगे। एर्दोगन ट्रंप की अंकरा में आखिरी मुलाकात के बाद होने वाले राबतों का हवाला देते हुए फिदान ने कहा अमरीकी सदन ने दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने, इख्तलाफी अमूर को हल करने की ख्वाहिश जाहिर की है।

0: जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरानी अफवाज के खातम ओलंपिया मरकजी हेडक्वार्टर ने ऐलान किया है कि इसे ऐसी इत्तलात मौसूल हुई हैं जिनसे जाहिर होता है कि अमरीका ने ईरान के खिलाफ दोबारा हमले शुरू करने का फैसला किया है। ये फैसला एक यूरोपीय ममालिक में होने वाली मुश्तरका मीटिंग में किया गया है और कुछ इलाकाई ममालिक ने इस फैसले पर रजामंदी जाहिर कर दी है। हेडक्वार्टर ने धमकी दी है कि अगर वाशिंगटन ने यह गलती की तो खित्ते में अमरीकी मफादात और फौजी अड्डों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी।
1: फॉक्स टीवी चैनल के ट्रेडिंग से बात करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर ईरान मुतालबा कबूल नहीं करता तो इस मुल्क को हवा में उड़ाना जरूरी होगा या नहीं, ये वक्त का मामला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना, इसका माशी तौर पर दिवालिया निकाल देना या किसी माहदे तक पहुंचना हमारे तमाम मुतबादलों में शामिल है। ये बयान तेहरान से हमें किसी इंतबाह के बाद आया जिसमें कहा गया था, अगर अमरीका या मशरक वस्ता में किसी मुल्क ने गलती की तो इन्हें सख्त हमलों से निशाना बनाया जाएगा। दूसरे अमरीकी महकमा खारजन इलाके में मौजूद अमरीकी शहरों के लिए फासदी इंतबाह जारी किया है। ईरानी पासदान इंकलाब के तर्जमान हुसैन मोहिबी ने अमरीका के मुमकिन नए हमले के बारे में कहा, अगर नया हमला हुआ तो हमारी दिफाई हमला और कार्रवाइयाँ पूरी तरह बदल जाएंगी। अगर नया हमला होता है तो हम हथियारों जंग के जोग्राफी को तब्दील करके रख देंगे। मोहिबी ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में अमरीका इसराइल के किसी मुमकिन नए हमले के इम्कान का जायजा लेते हुए कहा, अगर नया हमला हुआ तो हमारी दिफाई हमला और हिकमत अमलियाँ मुकम्मल तौर पर बदल जाएंगी। नई सलाहियतों से लैस करके हम एक नए मुसल्लह मैदान में दाखिल होंगे जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। हमारा अहदाफ पुराने अहदाफ नहीं होंगे, हमने ताहाल हमला न किए जाने वाले अहदाफ का इंतखाब किया है।
0: वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि ट्रंप इंतजामिया आलमी फौजदारी अदालत ICC के खिलाफ वसी इक्तसादी पाबंदियां नाफज करने की तैयारी में है। अखबार के मुताबिक मतवक्को अमरीकी पाबंदियां 6 से 7 माह के रियायती दौर के बाद आलमी अदालत के साथ ज्यादातर माली और तजारती लेन देन पर पाबंदी आयद करेंगी। मनसूबाबंदी करदा पाबंदियां ट्रंप इंतजामिया की इंतकाबी कार्रवाईयों में एक नुमाया शिद्दत का मजहर है जो अदालती एहलकारों को इनफरादी तौर पर निशाना बनाने से बढ़कर पूरे इदारे पर वसी पाबंदियां आयद करने तक पहुंच गई हैं। खबर में कहा गया है कि जराए ने बताया है कि वाशिंगटन पर एग्जीक्यूटिव इकदाम जल्द अज जल्द इसी हफ्ते अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के दौरान या इससे फौरन बाद हतमी शक्ल दी जा सकती है। वाशिंगटन ने पहले ही मुतद्दद अदालती कारकुनों को फरवरी 2025 में जारी करदा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत सजा दी है जिसमें अदालती कार्रवाईयों को कौमी हंगामी सूरत हाल करार दिया गया था। ICC ने 2024 में गजा में जंगी और इंसानियत सोज जराइम की पादाश में इसराइली वजीर अजम नेतन्याहू और साबिक वजीर दिफा यूआफ गलांट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे जिसके बाद अमरीका ने ये इकदाम उठाए हैं।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौम तक जनरल असम्बली के दो रोजा दौरे के दौरान आलमी रहनुमाओं के साथ कई अहम दो तरफा मुलाकातों का शेड्यूल बनाया है, जिनमें यूक्रेनी बरतानवी रहनुमाओं समेत दीगर रहनुमाओं से बातचीत शामिल है। तकरीबन 130 सरबराहान ममलकत न्यूयॉर्क में जमा हो रहे हैं, जहां जोग्राफी, सियासी कशीदगियां, कौम के सामने दराजाती चैलेंजेस मौजूद हैं। इस पस मंजर में अमरीका के मुतअद्दद बैन अल-अक़वामी इदारों के लिए फंडिंग में नुमाया कटौतियां की गई हैं। अमरीका के कौम दिदा मंदूब माइक वॉल्ट्स ने तस्दीक की, ट्रंप पीर की दोपहर न्यूयॉर्क पहुंचेंगे और ट्रंप टावर में सियासी मसरूफियात के बाद मंगल के सुबह जनसम से खिताब करेंगे। वॉल्ट्स ने कहा, सदर इस बात को उजागर करेंगे कि उन्होंने और उनकी इंसानी दुनिया भर में पेचीदा मसाइल का किस तरह डटकर मुकाबला किया है। वो ईरान के कभी जौहरी हथियार के मालिक न बनने की अहमियत पर भी जोर देंगे। ईरान के साथ साधन जो अब 6 माह से ज्यादा अरसे से जारी है, ट्रंप की सफारती बातचीत पर खासतौर पर खलीजी तआवुन कौंसिल के रहनुमाओं के साथ तयशुदा एक समिट के दौरान हावी रहने का इम्कान मौजूद है।
2: अमरीका के वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि चीनी हुकाम के साथ तजारत और मसनूई सहानत के हवाले से होने वाली बातचीत नहायत कामयाब रही है। बेसेंट ने इतवार के रोज जारी करदा बयान में चीनी हुकाम के साथ मौसर बातचीत का जिक्र किया और कहा है कि दोनों फरीकों ने मसनूई सहानत से मुतल्लिक खतरात के बारे में आइंदा भी राबते में रहने पर तबादला ख्याल किया है। बेसेंट ने नायब वजीर आजम ही लीफिंग के साथ दिन भर जारी रहने वाली मुलाकात के बाद सहाफियों के साथ बातचीत में कहा है कि हमने अभी चीनियों के साथ एक बहुत कामयाब मुलाकात की है। मुजाकरात में आला सतही अमरीकी तजारती अहदेदार जेमिसन ग्रेयर भी शरीक थे। तकरीबन 8 घंटे जारी रहने वाले इन मुजाकरात का मकसद दोनों ममालिक के आला रहनुमाओं की सरबराही मुलाकात से कबल तजारत, मसनूई जहानत और दीगर मामलात पर मुमकिन मुआहदों की बुनियाद रखना था। जुमेरात को वाशिंगटन में अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनके चीनी हम मनसब शी जिनपिंग की

0: मुलाकात भी मतवक्को है। वेस्टन ने कहा है कि अमरीका ने दोनों ममालिक के दरमियान सलामती के खतरे जैसे वाकियात के लिए खबर रसानी निज़ाम कायम करने की तजवीज़ पेश की है। उन्होंने कहा है कि हम जिस चीज़ पर बात कर रहे हैं वो एक निज़ाम कायम करना था। इसे अमरीका चीन मसनूई जहानत मुकालमा कहा जाएगा। हमने दोबारा मुलाकात करने पर भी इतफाक किया है।
1: कतर ने कहा अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बहाली के लिए सरसरा कोशिशें जारी रखे हुए हैं। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान माजिद अल अंसारी ने कहा हमारा सालस वक्त तकरीबन 2 हफ्तों से अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने पर मबनी तजवीज़ पर बातचीत कर रहा है। अंसारी ने कहा दोहा मुज़ाकरात की बहाली के हवाले से वाशिंगटन तेहरान के साथ रबते में है। उन्होंने मजीद कहा कतर और पाकिस्तान की तरफ से दोनों अफ्रीकान के दरमियान सालसरा कार्रवाई के दौरान कतरी सालस से शिरफ्त के लिए मुख्तलिफ दार हुकूमतों के दरमियान शटल डिप्लोमेसी जारी रखे हुए हैं।
0: रूस के हुक्मरान सियासी जमात यूनाइटेड रशिया ने मुल्क में दौरान जंग मुनक़दा पहले पार्लिमानी इंतखाबात के इब्तदाई नतज में वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली है। रूस मरकजी इंतखाबी कमीशन के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 58% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। इन नतज के मुताबिक यूनाइटेड रशिया को वफाकी पार्टियों फहरिस्तों के जरिए तय होने वाली 225 नशस्तों के लिए तकरीबन 58% वोट हासिल हुए हैं। पार्टी को बाकी 225 वाहद नशस्तों वाले इंतखाबी हलकों में भी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल होने का इम्कान है। इतवार को रात देर गए पोलिंग मराकज बंद होने के वक्त वोट डालने की शरह तकरीबन 57% थी। 3 रोज तक जारी रहने वाले इस इंतखाबी अमल में इन 4 इलाकों के राय दहिंदगान भी शामिल थे जिनका मास्को ने 2022 के बाद यकतरफा इलहाक करने का ऐलान किया था और जो अब भी रूसी कब्जे में हैं। 2014 में इलहाक किए गए जजीरा नुमा क्रीमिया के राय दहिंदगान भी इस राय शुमारी में शामिल थे। यूरोपीय यूनियन ने इन इकदाम की मुसम्मत की और इन्हें बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया है।
1: रूस का कहना है इंतखाबात के दिन किए गए यूक्रेनी हमलों का बदला लेना है। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि रूस इंतखाबात के आखिरी रोज मास्को इसके गढ़वचवार में किए गए 2 अफराद की हलाकत एक आयल रिफाइनरी में आग लगने का मौजब बना यूक्रेनी ड्रोन हमलों के जवाब में कीव पर अपने हमले तेज कर देगा। वजारत दिफा ने यूक्रेन को रूसी शहर का जमहूरी इरादा कमजोर करने का कसूरवार ठहराया। कहा कि हम जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। पेरिस ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोनिक मुलाकात हुई है जिसमें सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क में मुलाकात पर रजामंदी जाहिर की है।
0: चीन के जनूबी सूबे ग्वांगडोंग में एक टेक्सटाइल वर्कशॉप में आग भड़क उठने से 8 मेहनतकश हलाक हो गए हैं। शिनहुआ की खबर के मुताबिक फूशान शहर के जिला शूंदी के चान गिशिंग संती इलाके में वाके एक वर्कशॉप में कल दोपहर के वक्त आग लग गई। ईंटों और स्टील से तामीर करदा 2 मंजिला इमारत का 200 मुरबा मीटर का हिस्सा जो वर्कशॉप के तौर पर इस्तेमाल होता था आग की लपेट में आ गए। इस वाके में 8 कारकुन हलाक और 1 जख्मी हो गया है। वर्कशॉप और इसके गिर्दोनवा के इमारतों में मौजूद 63 अफराद को बाहर निकाल दिया गया है। आग लगने की वजह की तहकीकात जारी है।
1: पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 3 बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के तर्जमान ज़ुल्फ़ी बुखारी ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा पंजाब पुलिस ने अलीम खान के घर पर छापा मारा और इमरान खान की 2 और बहनों को भी हिरासत में ले लिया। नज़ीन के भतीजों के बच्चों को भी पकड़ लिया। पीटीआई के सेक्रेटरी इतलात के शेख वकास अकरम ने AFP को बताया खान साहब की बहनें और बच्चे हिरासत में लिए गए थे तहम बच्चों को बाद में रहा कर दिया गया। अकरम ने मजीद कहा 3 खवातीन को लाहौर की कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इसके साथ इस तरह से खबरें खत्म हुई।

बढ़ती हुई हमायत हासिल करता जा रहा है। हमारी तमन्ना है कि अम को बरकरार रखने में बड़ा अहम होने वाला अकवाम तिदा ज्यादा मुनसफाना और गैर जानबदाराना ढांचे के साथ आलमी अम के क्याम किराम में खिदमत अदा करें और 21 सितंबर आलमी योम अम इस ख्वाहिश के पूरा होने का वसीला बने।

0: और सामिन, अब एक गीत आपकी समातों की नजर किए देते हैं। गीत के बोल हैं क्योर बचा और गाया है यशार ने।
1: बिर गुन आर्त बिर गुन दहा बिर गुन आर्त एर गुन दहा।

वारिस औकाफ का बुनियादी मकसद ज्यादातर गैर मामूली टैक्सों के बोझ को कम करना था, जैसा कि मुअर्रखीन जोर देते हैं कि यह संदूक उस्मानी माशरे में समाजी अमन कायम रखने और अमीरों गरीब के दरमियान खलीज को कम करने के लिए मौसर तरीन हिफाजती निजामों में से एक थे। महल्ले का ये वक्फ महल्ले की वकार की बीमा पॉलिसी था। आतशज़दगान के लिए तामीराती लकड़ी की इमदाद, जैसा कि आप जानते हैं कि उस्मानी इस्तांबुल बड़ी हद तक लकड़ी के घरों पर मुश्तमिल था और सबसे बड़ा खौफ हरीक यानी आग का होता था। जब किसी महल्ले में आग लगती तो जिस शख्स का घर जल जाता वो सिर्फ अपना माल ही नहीं बल्कि अपने रिहाइश को भी खो देता था। 18वीं सदी के इस्तांबुल के शरिया रिकॉर्ड में मुतअद्दिद ऐसे रिकॉर्ड मिलते हैं जिनसे मालूम होता है कि आग लगने के बाद महल्ले का अवारस संदूक फौरन फाल हो जाता और आग जैसी आफात के बाद जरूरतमंदों की मदद की जाती थी। ये मुकामी बाहमी तआवुन की एक मजबूत मिसाल थी। ताहम ये निज़ाम जदीद मफहूम में बीमा का निज़ाम नहीं था बल्कि रजाकाराना और मुकामी इमदाद बाहमी तआवुन का एक नमूना था। गरीब लड़कियों के जहेज की मिसाल। समिन वक्फ की तहजीब ये नहीं चाहती थी कि गुरबत किसी नौजवान के घर बसाने में रुकावट बने। अगर किसी महल्ले में किसी लड़की का वालिद वफात पा चुका हो या उसके खानदान की माली हालत कमजोर हो और इसकी शादी की उम्र आ जाए तो दीगर औकाफ के साथ अवारज संदूक भी मदद के लिए आगे आता था। वक्फ नामों में कसरत से ऐसी दफात मिलती हैं जिनमें दर्ज होता था कि हमारे महल्ले की गरीब लड़कियों में से जो शादी करें इनके जहेज की खरीदारी के लिए इतनी रकम मुख्तस की जाए। इस तरह वो नौजवान लड़की महल्ले वालों की मदद से अपनी इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर और वकार के साथ अपना घर बसा सकती थी। सालमा यानी टैक्स और टैक्स में सहूलत। बाज़ औक़ात रियासत जंग जैसे गैर मामूली हालात में अवाम से अवारस टैक्स वसूल करती थी। अवारस टैक्स उस्मानी मालियाती निज़ाम में महज आमदनी का एक जरिया नहीं था बल्कि समाजी बाहमी तआवुन को मजबूत बनाने का एक तरीका भी था। इज्तमाई अदायगी के निज़ाम के जरिए अमीर और गरीब के दरमियान एक तवाज़ुन कायम किया जाता था। माशरे में हर शख्स अपने मसले का खुद जिम्मेदार है के तसव्वुर की बजाय पूरा महल्ला इज्तमाई तौर पर जिम्मेदार है का तसव्वुर गालिब था। उस्मानी दौर में अवारस टैक्स महल्ले की बुनियाद पर वसूल किया जाता था और जो लोग इसे अदा करने की इस्तेआत नहीं रखते थे इनका बोझ अक्सर महल्ले के बाहमी तआवुन या अवारस संदूकों के जरिए पूरा किया जाता था। ये उस्मानी मुआशरे में मुकामी समाजी यकजहती और बाहमी तआवुन की एक अहम मिसाल थी। सामिन, आज हम जिस मुस्तकबिल की फिक्र को बड़ी बड़ी बीमा कंपनियों की पॉलिसियों और पेचीदा समाजी तहफ्फुज के निज़ामों के जरिए हल करने की कोशिश करते हैं, इसे सदियों पहले इन सरजमीनों में ईमान और पड़ोसी के हकूक के जरिए बुनियादी तौर पर हल कर लिया गया था। अवारस औकाफ हमारे कानों में एक और बात की सरगोशी करते हैं और वो ये कि एक मुआशरा इसी वक्त तक कायम रह सकता है जब तक वो अपने सबसे कमजोर फर्द का हाथ थामे रखता है। इन संदूकों में सिर्फ सिक्के जमा नहीं होते थे बल्कि इंसान का इंसान पर वो अटल एतमाद भी महफूज होता था। जदीद दुनिया की इनफरादी तन्हाई के बरक्स वो असीम वर्षा जिसमें महल्ले का हर फर्द दूसरे के दुख को अपना दुख समझता था और मैं होने को हम होने पर तरजीह नहीं दी जाती थी, आज भी हमारे ज़मीरों के किसी गोशे में एक ऐसी मशल की तरह रोशन है जो कभी नहीं बुझती। अवारस की रूह दरअसल इंसान से की गई वो इलाही और इंसानी सरगोशी है कि तुम अकेले नहीं हो। ये वो निज़ाम था जिसे ऐसे लोगों ने कायम किया था जो अपने दरवाजे के पड़ोसी की भूख को अपनी नींद का मसला समझते थे। ये इंसानी तारीख के नफीस तरीन समाजी मुआहिदों में से एक था। सामिन, अवारस संदूक की चाबी महल्ले के इमाम, महल्ले के मुख्तार और महल्ले के चंद काबिले एतमाद दुकानदारों के पास होती थी, लेकिन वो चाबी सिर्फ लकड़ी के एक संदूक को ही नहीं खोलती थी, एक पूरे मुआशरे के मुस्तकबिल पर एतमाद का दरवाजा भी खोलती थी। वहां से निकलने वाला हर सिक्का किसी जख्म पर मरहम रखता और किसी आंख के आंसू पोंछता था। हम महल्ले की इस खामोश बीमागाह और पड़ोसी की जानब से पड़ोसी की तरफ बढ़ने वाले इस पोशीदा हाथ के सफर से गुजर रहे हैं। वक्फ की तहजीब इंसान की जिंदगी में सिर्फ मुश्किलात के मुकाबले में ही नहीं बल्कि उम्र के हर लम्हे में एक माना पैदा करती है। आप भी रहमत, शफकत और नेकी के साथ रहिए और याद रखिए कि जब एक हाथ आगे बढ़ता है तो एक जिंदगी बदल जाती है और कहानी मुकम्मल हो जाती है। देने वाले हाथ की कहानी में अगले हफ्ते फिर मुलाकात की ख्वाहिश के साथ अपनी मेज़बान मिसबा शाहीन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।

इस्लामी लोगों के बगैर शहर क्या है? शेक्सपियर से जब ये पूछा गया तो उनने कहा कि शहर लोगों की वजह से होते हैं, ताहम शहरी कार्य की वजह से लोग सालों के दौरान फितरत से दूर हो जाते हैं। जब हम रिहाइश गाहें, काम की जगहें, सड़कें कहते हैं तो सब्ज़ारों के लिए बहुत कम जगह रह जाती है। जब उनके कुदरती मस्किन उनसे छीन लिए जाते हैं तो बहुत सी जानदार नस्लें शहरों को छोड़कर अपने लिए मुख्तलिफ जगहें तलाश कर लेती हैं। शायद वो वाहिद अनवा जो हम बेघर नहीं कर सकते वो परिंदे हैं। बेशक शहर की ज़िंदगी उन पर भी असरअंदाज होती है, लेकिन वो फिर भी जहाँ चाहें उड़ने और उतरने के लिए आज़ाद हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक़ आसमां से है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब अंधेरा छा जाता है तो परिंदे कहाँ जाते हैं? क्या उनके पास घर भी हैं जहाँ वो महफूज रह सकें? क्या वो दरख्तों की खोखलियों में जाते हैं या अपनी शाखों में छुप जाते हैं? आज हम अनातोलिया में परिंदों के महलात और परिंदों के घरों के बारे में बात करना चाहेंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। बर्ड हाउसेस इंसानों की हमदर्दी के एहसास की सबसे नुमाया मिसालों में से एक हैं। एक नन्ही मखलूक के लिए मखसूस पना गाहें बनाकर उसे खतरा से बचाने के लिए ज़मीर और हमदर्दी के जज्बात के अलावा और कौन सा जज्बा बयान किया जा सकता है? ये मालूम है कि कबूतर के पहले घर 800 साल पहले पत्थरों में तराशे गए थे। तहरीरी ज़राए मेसोपोटामिया में परिंदों के घरों के वजूद का जिक्र करते हैं। बाद में मुख्तलिफ ममालिक और सकाफ़तों में परिंदों के घर नज़र आने लगे हैं। कुछ मुहक्किकीन इन ढांचे के शऊर की आला सतह के इशारे के तौर पर बयान करते हैं। टावर की शक्ल के डोकोर्स हेलेनिस्टिक और रोमन अदवार में बनाए जाते रहे हैं। परिंदों के घर तुर्किस्तान में असलान बाबा के मकबरे, पाकिस्तान में लाहौर का शाही किला, भारत में आगरा फोर्ट, लाल किला और ताजमहल में मिल सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ के बारे में हम वाकई बात करना चाहते हैं वो अनातोलियाई सरजमीनों में परिंदों के लिए ख़ास तौर पर बनाए गए ढांचे हैं। जैसा कि हमने अभी जिक्र किया, दुनिया की दूसरी तहजीबें भी परिंदों के लिए घर बनाती रही हैं। ताहम अनातोलिया में परिंदों के घर उनसे मुख्तलिफ हैं। दीगर सकाफतों की तरह ये घर परिंदों के शिकार या फ़ायदा उठाने के लिए नहीं बनाए जाते, ये सिर्फ परिंदों की पनागाह के लिए बनाए जाते हैं, तो उसके करने का मकसद और तरीका भी मुख्तलिफ होता है। बर्ड हाउस उन जगहों के छोटे नमूनों के तौर पर बनाए गए हैं जहाँ लोग इन ज़मीनों में रहते हैं, इसीलिए इसे अक्सर बर्ड हाउस या बर्ड पैलेस भी कहा जाता है। मगरबी सयाह या सफारतकार जो 1900 की दहाई के अवाइल में अनातोलिया आए थे, जानवरों खासतौर पर परिंदों में दिखाए जाने वाले दिलचस्पी से बहुत मुतासर हुए। अपनी याददाश्तों में इतालवी मुसनिफ एडमोंडो अमेसिस बताता है कि इस्तांबुल में सुल्तानों और अफराद के जरिए लातादात कबूतरों को खाना खिलाया जाता था और यह कि तुर्क परिंदों की हिफाजत भी की जाती थी। जर्मन मार्शल हेलमेट वोन मोल्टके ने उस्कुदार में बिल्लियों के लिए मुख्तस एक बिल्ली हस्पताल और बायजीत में कबूतरों के लिए एक जगह का जिक्र किया है। फ्रांसिस